0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: तरफ प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।
2: Forget coffee, chai. He has got your morning kick. UAE's number one way to rise and shine. The Big Breakfast with Sid. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Zuleika Hospital.
3: Good morning, it's bus 6 a.m. on this last day of the working week. Bhai, wahi din jiska hum intezar hota hai. It's a Friday. Kuch chand ghante काम पर, उसके बाद दो दिन ऑफ वीकेंड। हाउ इज दैट थॉट टू किक स्टार्ट दिस डे? जस्ट लाइक एवरी फ्राइडे, दिस इज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट योर डे, चाहे मंडे हो या फ्राइडे। इट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड, राइट हियर ऑन बिग 106.2, पार्ट ऑफ द फनी शेयर नेटवर्क।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Srinagar message from Ankita, who said that, hi Sid, good morning. Thank you so much for your entertainment. Thank you so much for your message, Ankita. It's your encouragement that keeps us going. And she says that, can you please play the new song from Cocktail 2? Yeah, this happens with me also, kafi bar. के सुना सुना था वो एक नया गाना बात कर रहे थे कॉकटेल टू का कौन सा गाना है इट इज कॉल्ड जग से लाज इट सीम्स लाइक अ पार्टी का माहौल ऑलरेडी शुरू हो गया यार यू हैव वन मोर डे एट वर्क अंकिता बट यार थैंक यू फॉर योर मैसेज इन केस यू आल्सो वांट टू बी आवर अर्ली मॉर्निंग इन्फ्लुएंसर्स लाइक अंकिता इन्फ्लुएंसर प्लेलिस्ट Send me a WhatsApp 0543091062. This is the early morning request hour on The Big Breakfast with me, Sid. Big. Big 106.2.

0: कुछ भी बोलो यार, यू लव हिम हेट हिम, यू डेफिनेटली कांट इग्नोर द फैक्ट दैट इज कम्प्लीटली चेंज द फेस ऑफ हिंदी सिनेमा. 2000s, अर्ली 2000s की मूवीज याद करो एंड यू डू थिंक ऑफ करण जौहर.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: माही वे साधना सरगम की आवाज, लास्ट टाइम सेड दैट, साधना सरगम की आवाज. दिस इज बिग 106.2, आप सुन रहे हैं द बिग ब्रेकफास्ट विद

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उही बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: महबूबा रीमेक्स राइट ऑन बिग 106.2 एंड आज से इनफैक्ट कल से शारजा का मिडनाइट पार्किंग शुरू हो गया.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: राइट, नो द रूल दैट यू नो 10 की जगह 12 बजे तक पेड पार्किंग होगी बिकॉज रेसिडेंट्स इन शारजा स्पेशली अलनादा अलमजाज अलमहत्ता ये जो एरियाज हैं वहाँ पर कंप्लेन कर रहे थे ना कि कांट फाइंड पार्किंग क्लोज टू होम. सो दिस इज यू नो समथिंग दैट इज डेफिनेटली इन द राइट डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाट द रेसिडेंट्स इन दीज एरियाज आर सेइंग. इट्स अ बिट टू अर्ली टू काइंड ऑफ जज द इम्पैक्ट बट यस क्वाइट अ फ्यू पीपल हु वर आस्क्ड सेड दैट दे फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग हैव मैनेज्ड टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ पार्किंग क्लोज to home. 1st of July say paid public parking hours across Sharjah extended to midnight as opposed to the 10 PM earlier cutoff, and the municipality said the move followed a detailed study of parking demand and feedback from residents and visitors. In case you are from one of these areas, agar aap inme se kisi area mein se hain, and if you're in the mood, give me a call, let me know how things are, how they've been for the past couple of days. 800-1062 is the number. Coming up, badli si hawa hai from the bads of Bollywood. Lots of sports news and Bollywood news coming up in just a while. Also some fab contests for you to play and win some amazing prizes. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
1: Big 106.2.

0: 7:36 ऑन द क्लॉक. बहुत सारे लोग बारी जावा अपनी नींद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड कप.
1: द ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: इट वाज अ नाइट ऑफ प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स लास्ट नाइट. मतलब जो सोचा था वही हुआ. सबसे पहले देयर वाज अ स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया. स्पेन ट्राउंस्ड ऑस्ट्रिया 3-0. Wonderful. They are looking now finally in red hot form. And then there was Portugal versus Croatia. I was supporting Croatia, but Portugal managed to beat Croatia and Luka Modric's sparkling career. Yeah, I mean, if you see the past two World Cups, he's been like an absolute superstar on the international stage. But Portugal beat Croatia. It was Ronaldo versus Modric, and Ronaldo, Sri managed to get one goal, but wo penalty ke through. Usse pehle he scored a magical.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

0: There are some things in this world that only Akshay Kumar can pull off.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: So the question is whether he'll be able to pull a rabbit out of the hat and save Hera Phiri 3, yaar. Kyunki ab Paresh Rawal ke baad Priyadarshan bhi kat liye hain, yaar. Unhone kaha ki I do not think that this film is ever going to see the light of day because itna zyada controversy hai. There's so much of legal battles. Unhone kaha, bhai, sorry. Thanks but no thanks. Mujhe maaf karo. Main jana chahta hoon. So that's it. Now, ab bach gaye Akshay Kumar and Sunil Shetty. And that's about it. Let's see what happens to Hera Phiri 3. Lekin, let's see what happens in the big Bollywood VK.
1: Participate in the Bollywood VK contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: क्या आप जानते हैं कि हम आपको स्टेकेशन जिता रहे हैं द वंडरफुल रिक्सॉस अलमायरेड इन रसल खेमा. अगर नहीं तो यू बीन लिविंग अंडर अ रॉक. भाई क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप करते रहो 0543091062 पर. आपको क्या टाइप करना है, BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस स्पेस देकर अपना नाम, BSS स्पेस योर नेम एंड कीप व्हाट्सएपिंग इट टू 0543091062 इन जस्ट अबाउट वन आवर फ्रॉम नाउ. यू हैव एन आवर टू सेंड मी एज मेनी व्हाट्सएप्स एज यू पॉसिबली कैन एंड देन टू पीपल इन कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट ईच अदर बॉलीवुड वेके. यानी कि एक गाना मैं आपको सुनाऊंगा, अ सॉन्ग दैट हैज बीन shot in a wonderful touristy destination and then us gaane se jude teen sawal agar aapne inme se do ka sahi sahi jawab mujhe de diya then you are into the draw to win this wonderful staycation Rixos Almirid in Russell Khema. Saath mein on the spot you win two Vox tickets and an F&B voucher. So keep WhatsApping 0543091062 par. Coming up in just a while, Mascara from Main Vapas Aunga. This is the Big Breakfast with me, Sid.
1: Big.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: इंश्योरेंस मार्केट .ae 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
8: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलराज, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: Morning, it's 8:13 on the clock on this Friday ki subah. It's been a hot, bright and sunny start to this day. 33 degrees Celsius right now. Humidity is still quite high, 66%. Highs of 36 right now, lows of 33 degrees.
8: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me.
10: Big 106.2.
11: Big 106.2.
8: Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.in.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: दुनिया का सबसे फेमस कपल आजकल वो है जिसने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर चढ़ान कर लिया. I mean, they just didn't go up to the top floor. They decided to go right on top of that, वो जो एंटीना है ना उसके ऊपर जाकर खड़े हो गए यार.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: लेकिन आप और मैं यानी कि सोशल मीडिया कंज्यूमर्स तो है ही बेरहम. So people have converted that into a total meme fest. Okay, so उधर ऊपर चढ़ के इन लोगों ने these this masked couple, you must have seen those images, right? They unfurled a flag on top, right? और वो flag के ऊपर लोग कुछ अतरंगी चीजें लिख के उसके memes डालने शुरू कर दिए. For example, make PlayStation games released on discs again. Yeah, because I mean, if you're a gamer, if you didn't hear about this, this might just kind of cause a nostalgia ka outburst, because in 2028. या कुछ दो साल और एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद डिस्क पे गेम्स आर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल. सो आरआईपी गेम वाले डिस्क, दैट्स व्हाट सोनी प्लेस्टेशन हैज अनाउंस्ड. टिल 2028 इज व्हेन यू कैन हैव एंजॉयमेंट ऑन दोज डिस्क. बट आप जानते हैं, टॉकिंग अबाउट गेम्स, व्हाट इज द गेम दैट वी गोना प्ले? इट्स द बॉलीवुड वेके.
1: पार्टिसिपेट इन द बॉलीवुड वेके कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big summer surprises. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Hospitality partner Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: If you just tuned into this contest, क्या होगा बताता हूँ आपको कुछ देर में. लेकिन in the meanwhile, आपको WhatsApp करते रहना है थोक के भाव में, because it is free. 0543091062. That's our number. Big summer surprises, यानी कि BSS, उसका abbreviation है. BSS space देकर अपना नाम आपको भेजते रहना है 0543091062 पर. नंबर लग गया तो you could win an amazing staycation at the Rixos Almirid in Ras Al Khaimah.
2: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे. लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे. मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे.
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Mix. Weekdays, 10 a.m. to 2 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: Big traffic तो कहीं पर भी नहीं है, छोटा छोटा small traffic आपको मिलने वाला है. The usual suspect 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. In the same direction, Beirut Street is also getting a bit congested. D62, 611 पर भी आपको थोड़ा बहुत formality से traffic मिलेगा ही going towards Al Aviv. Then 44 Al Khail Road पर there are a couple of pockets of traffic. एक तो वर्सान 2, वर्सान 3 वाला गोल चक्कर right before Dubai Safari Park. And then you'll find D3 going towards Business Bay is also getting just a bit congested.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE. Starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रेयान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रही तेरी ना।

इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: It's 9:11 on the clock on this Friday ki subah, and it's now time to play.
1: Participate in the Bollywood Vacay Contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: Two contestants ready with us on the phone line. Sabse pehle, let's say good morning to Paki. Good morning.
2: Good morning, Sid.
0: Kaisi hain aap? Kya kar rahi hain? Kahan par hain? Ghar pe hain? Office mein hain?
2: जी, घर पे हूँ, हाउसवाइफ हूँ, चाय बना रही थी।
0: चाय? अरे बहुत लेट हो गया चाय के लिए तो यार।
2: जी, हस्बैंड लेट जाते हैं थोड़ा बहुत।
0: अच्छा, चलो बढ़िया है। वी गॉट परमजीत, हू इज गोना प्ले अगेंस्ट यू। परमजीत पाजी, क्या हालचाल? सत श्री अकाल, क्या हाल है? वीकेंड दे क्या प्लान? कहाँ पर चक दे फटे
3: पाजी? एकदम वीकेंड की फुल प्लानिंग है। अभी तो फिलहाल कॉमेडी का इंजेक्शन लेने जा रहे हैं।
0: कॉमेडी का इंजेक्शन लेने जा रहे? अच्छा चलो सही है, कॉमेडी कर मत देना, थोड़ा सीरियस कॉन्टेस्ट है, ठीक है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना
3: है। हाँ जी, ठीक है। एक्चुअली वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, कैरी ऑन जट्टा।
0: वेरी नाइस यार। एक काम करना, मंडे को जब मैं वापस आऊंगा, प्लीज गिव मी अ रिव्यू यार, आई एम वेरी क्यूरियस कि कैसे, ठीक है? क्या अरे पर ये कोई टाइम है मूवी देखने का?
3: सर जी यही तो है सर, सबसे अलग काम करना सर, यही जिंदगी
0: है। क्या मतलब यूजुअली आप क्या काम करते हो? इस फ्राइडे एंड ऑफ डे, और व्हाट इज ये राज क्या है?
3: I'm into HR actually. Friday is my off day. So me and my wife, we are going for a movie. So
0: नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया।
3: रात को तो सिर्फ दो सीटें,
0: मैं समझ गया। यू आर इन HR, सारे रूल भी आप बनाते हो, उसको तोड़ते भी आप खुद ही हो। आप जा खड़े, हम जा खड़े हो जाते हैं लाइन वाइज।
3: सर एक ही छुट्टी मिलती है गरीबों को।
0: नहीं, आप देने वाले हैं, आप लेने वाले नहीं है छुट्टी, परमजीत जी। चलो, इट्स गोना बी परमजीत वर्सेस पाकी। नाउ हियर्स व्हाट्स गोना हैपन इन दिस कॉन्टेस्ट, ठीक है? मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, एक ऐसा गाना जो कि एक वंडरफुल टूरिस्टी डेस्टिनेशन पे शूट किया गया है, ऑलराइट? एंड उस गाने से जुड़े मैं आपको तीन सवाल पूछने वाला हूं, ठीक है? आपको अगर लगता है कि आपको जवाब पता है तो आपको अपना नाम चिल्लाना है बजर की तरह, लेकिन उससे पहले बिग जोड़ना है। सो बिग परमजीत एंड पाकी, इफ यू नो दैट यू नो द आंसर, इफ यू थिंक देन से बिग पाकी। ओके
2: ओके,
0: आर यू गाइस रेडी?
2: जी।
0: Yeah. कोई शक, कोई सवाल, कोई HR questions, कोई ईमेल करने का मन कर रहे है तो अभी पूछो।
3: नहीं मालिक।
0: चलो सही है, रेडी?
3: रेडी।
0: गाना सुना दूं आपको?
3: दो।
0: गाना इज दिस वन। बेफिक्रे का टाइटल ट्रैक, दिस इज योर सॉन्ग। ऑलराइट, अब मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा। सवाल नंबर वन, बताइए कि इस गाने की शूटिंग कहां पे हुई थी?
3: बिग
0: पाकी, बोलिए।
2: ग्रीस
0: इज द रॉन्ग आंसर। परमजीत, यू वांट टू टेक अ शॉट एट दिस?
3: पेरिस
0: इज द करेक्ट आंसर। 1-0 इन फेवर ऑफ परमजीत। ऑलराइट, ओके, अगला सवाल, आर यू रेडी?
3: रेडी।
0: इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम बताओ। बिग परम, बोलिए।
3: आदित्य चोपड़ा।
0: करेक्ट आंसर, क्या बात है, कैरी ऑन जट्टा। ओ बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले, क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब एक तरह से देखा जाए, ओ क्या, फिर से वन मोर टाइम, 3-2-1। भाई देखा जाए तो एक तरह से आपकी टिकट जो आप देखने जा रहे हो फिल्म, उसके हमने पैसे भर दिए यार, और क्या चाहिए आपको। साथ में FNB वाउचर ऑन द स्पॉट आपने जीत लिया है, और आपका नाम ड्रॉ में चला गया। कैसा लग रहा है इस वक्त? तो है परमजीत, तो है
3: बल्ले बल्ले भाजी, थैंक यू, बल्ले बल्ले करा दी, वीकेंड होना था भाजी।
0: बट पाकी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस कॉन्टेस्ट, यू नो देयर हैज टू बी वन विनर। परमजीत, आपका नाम ड्रॉ के अंदर चला गया, अगर इस ड्रॉ में से आपका नाम निकला तो आप जीत जाएंगे दिस वंडरफुल स्टेकेशन, जिस पे हर किसी की नजर है UAE में, ट्रस्ट मी। एंड दिस इज एट द रिक्सोस अलमायरिड इन रसल खेमा। ऑल द बेस्ट। या
3: थैंक यू सो मच वंस अगेन टीम बिग FM, एंड थैंक यू स्वीट पाजी टू यू एज वेल, हैव अ वंडरफुल वीकेंड,
0: एंजॉय। आपको आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि कितने लोग आपसे जल रहे हैं इस वक्त, नॉट जस्ट बिकॉज आपका नाम ड्रॉ में चला गया, बिकॉज आप फ्राइडे सुबह मूवी देखने जा रहे हो, बाकी सब लोग काम पे जा रहे
3: हैं। फर्स्ट टाइम आई हैव विन समथिंग ऑन FM, थैंक यू सो मच।
0: टेक केयर मैन, टेक केयर, बी सो हैप्पी फॉर यू, एंड एंजॉय द मूवी, एंड एंजॉय द पासेस एंड द FNB वाउचर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ड्रॉ व्हेन इट हैपेंस। दैट इज परमजीत, हमारे आज के ड्रॉ एंट्रेंट हैं, हमारे आज के you know winner of all these so many goodies, all thanks to the big summer surprises. And don't forget, big summer surprises being made possible by our presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almirid Russell Khema. Also don't forget ki kal nahi ab Monday ko ek bar phir se hum log khelne wale hain, and you could get shortlisted in the lucky draw and also win movie tickets and an FNB voucher.

0: 5,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.
1: You know, I've come to realize that as a parent of a little child, you know, life mein kafi tension hote hain, especially when it comes to birthday parties. Ki yaar, usne jo last time unko diya tha, wahi recycle karke usko wapis na de dein, ya last time jo diya tha, usse kuch alag gift dena padega. So, but Aamir Khan ki life is also quite similar. It's just that birthdays nahi, his life is all about marriages.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: भाई बहुत ही खास दिन है परसों आमिर खान की लाइफ में. मैं क्या बोल रहा हूँ उनको खुद ही बोलने दीजिए.
3: हाँ, मेरी शादी हो रही है 5 जुलाई को और बहुत ही छोटी शादी है, घर पे ही कर रहे हैं. हाँ, तो 5 को बहुत ही खास दिन है हमारे लिए और बस दोनों फैमिलीज हैं, कुछ खास दोस्त हैं, छोटा सा घर पे ही कर रहे हैं हम लोग और सबकी दुआएँ चाहेंगे हम सबकी. सब लोग, आप लोग हम ब्लेसिंग्स दें, प्रार्थना दें, प्रार्थना करें कि हम खुश रहें और अच्छा सफ़र रहे हमारा.
1: Is it possible to get like bored of getting married? Wow, what a question that is. Yeah, don't answer it. Don't. But yeah, I mean, if you're Aamir, thankfully mere ko invite nahi karte apni shaadi mein, banna badi dikkat hoti. You can't say like Aamir shaadi kar raha hai, you'll be like Aamir phir shaadi kar. You have to add that phir. But chalo bhai, all our good wishes with Aamir Khan. Speaking of which, Juk Juk Jio is what we have to say to Aamir Khan and Gauri Spratt, his wife to be. Day after, परसों आमिर की शादी है. Coming up very soon, the big Bollywood quiz. This is the big breakfast with me, Sid.

0: 9:27 time for the big Bollywood quiz. Aaj Alia Bhatt ki ek movie aa rahi hai, it's called Alpha.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: मैं सोचा क्यों ना टेस्ट करूं आपकी आलिया भट्ट फैंडम. आई एम गोना बी प्लेइंग आउट अ लिटिल सीन फ्रॉम आई वुड से अ बिग मूवी इन आलिया भट्ट्स करियर. हाँ या इसको सुनिए, बताइए कि फिल्म का नाम क्या है. बड़े सुपरस्टार के साथ उन्होंने एक फिल्म की थी, उस फिल्म में इस तरह के सीन्स थे.
2: सॉरी,
3: प्यार में अंधे हो गए हो क्या? Am I invisible?
2: We said sorry.
4: Relax.
3: Staring into eyes.
5: They're a couple.
6: Oh, you're so kuchi kuchi, you're so sweet.
0: कौन सी ये फिल्म है? अगर इतने से आप पहचान गए, देन यू आर अ बिग आलिया भट्ट फैन. इफ यू नो द नेम ऑफ द फिल्म, देन गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. शी स्टार्ड ऑपोजिट अ ह्यूज बॉलीवुड स्टार इन दिस वन. या सो फिल्म का नाम अगर आपको पता है, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.
1: बिग 106.2.

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Thinking about looking and feeling your best? At Zulekha Hospital, our aesthetic and plastic surgery specialists deliver discreet, world-class care in facial refinement, body contouring, and cosmetic enhancement using advanced techniques designed to enhance your natural features with precision and balance, with results that look natural and feel like you. Zulekha Hospital, where confidence feels natural. Call 600-52442 to book your appointment.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलरस से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलरस कहाँ है? कहाँ है अलरस?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलरस है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलरस।
4: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Listen to her every day.
5: Mugambo, खुश हुआ।
6: प्रिया जी, मुझे एक बात बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आती हैं? आपकी फोन की बैटरी यूजुअली कितने परसेंटेज पे रहती है?
7: I am from the 90 to 100%.
6: Yeah, Miss Responsible, you will never lose your keys. You are a perfectionist.
7: Super, super responsible. वो कभी कभी कर्स हो जाता है, you know?
6: अगर आप परफेक्शनिस्ट बॉस हो तो आपके एम्प्लॉइज के लिए 100% कर्स है। बट प्रिया, यू नेवर फॉरगेट योर पासवर्ड्स आल्सो, राइट?
7: नो,
6: देखा, आई लव दिस रिसर्च।
7: नो माय ऑल माय क्रेडिट कार्ड नंबर्स, माय बैंक अकाउंट नंबर्स, पासपोर्ट नंबर्स, ऑल दोस आल्सो आई नो बाय रोट।
6: दिस रिसर्च इज बैंग ऑन देन।
7: And then I never claim that I am good with numbers. But these numbers I know very well.
6: But then a dropping battery icon definitely gives you a major anxiety. You carry a power bank with you always.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: Hey, jaldi utha tera khada na. Chal hata. Ha ha. Jaldi utha. Ha ha.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
9: All right, it's 9:31 on the clock. Let's take a look. सबसे पहले at Business Bay E44 D3 going towards Business Bay. आपको मिलेगी 3-4 मिनट की देर. Also, आज going north, going towards Al Quds Fort, right as you cross Sakim on E44, you'll find a bit of congestion there. So be careful. Then 311, E11 heading south, going towards Dubai from Sharjah. The usual 5 to 7 minutes ka delay, and then there's a bit of congestion building up at D62, which is Beirut Street heading south. The good news is 611 par na ke barabar traffic bach gaya hai. In case you spot something interesting traffic wise, give me a call 800-1062 par.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
10: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
0: Big 106.2.

0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: 9:40, and this is the kind of thing that really I wake up for in the morning.
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: मेरे साथ है चारू ऑन द फोन लाइन. चारू,
2: हाय सिद.
1: आप दिन में या घंटे में कितनी मूवीज देखती है मुझे बताइए प्लीज.
2: दिन में मैं दो मूवी देख ही लेती हूँ.
1: किया दो पूरी पूरी मूवीज, यानी कि 6 घंटे का इन्वेस्टमेंट आपका रहता है ऑन बॉलीवुड.
2: हाँ, मैं बॉलीवुड नहीं, मैं कुछ भी देख रही हूँ.
1: फिल्मों पे 6. वाओ यार, आई मीन आपको उन्हें नहीं, उन्हें आपको पैसे देने चाहिए. ये सिचुएशन खड़ी हो गई है. बट ये इतना टाइम कैसे मिल जाता है आपको मूवीज देखने का?
2: एक्चुअली एक ही बेटा है ना. हाँ. तो वो स्कूल चले जाता है, हस्बैंड ऑफिस, तो मैं पूरा दिन क्या करूँ.
1: So,
2: फोन पे मैं ज्यादा रहती नहीं हूँ.
1: मोबाइल फोन पीछे चलता रहता है, मूवी चलती रहती है. आप मूवीज सुनती ज्यादा है देखने से?
2: बिकॉज
1: पीपल हुआ जस्ट स्क्रैचिंग द हेड्स के क्या, वाई सिड इतनी तारीफ क्यों कर रहा है. तो मैंने ना छोटे से भी छोटा एक मोमेंट सुनाया था आलिया भट्ट के मूवी करियर का. इट वॉज एज स्मॉल एज दिस.
3: सॉरी,
4: प्यार में अंधे हो गए हो क्या? Am I invisible?
3: We said sorry.
1: बस इतना मैंने सुनाया, and then Charu was able to guess from this small little clip कि which Alia Bhatt movie this scene belonged to. What is the correct answer, Charu? बताओ.
2: Dear Zindagi.
1: Dear Zindagi.
2: और आपने बहुत, हाँ, एक बहुत अच्छा clue दिया था.
1: हाँ.
2: ये superstar के साथ है ये movie.
1: नहीं तो superstars तो बहुत सारे हैं इनके साथ, इन्होंने film की है, लेकिन ये इतनी छोटी.
2: नहीं, जब ना आलिया ने अपनी शुरुआत करी थी ना, तब उसकी वॉइस बहुत ना बच्चों वाली थी.
1: एक बात बोलूं मैं,
2: उसकी मैच्योरिटी बहुत आ गई है आवाज में.
1: एक बात बोलूं
2: जी,
1: जब कोई इतनी जम के तारीफ कर रहा होता है ना, तो सुन लेना चाहिए. सामने से इसे सवाल मत करो, ठीक है? मैं यहाँ तारीफ कर रहा हूँ, आप उसको वो करे जा रहे हो सामने से. बट चलो चारू, कांग्रेचुलेशंस. इफ देयर समबडी हु डिजर्व्स दीस ओपन मूवी टिकट्स, इट इज यू यार. यू, आपने साबित कर दिया है दैट यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड फैंस इन द यूएई. सो कांग्रेचुलेशंस.
2: थैंक यू.
1: दो ओपन मूवी टिकट्स चारू ने जीत लिए हैं. ऑल थैंक्स टू आलिया भट्ट. आलिया भट्ट की अल्फा इज रिलीजिंग आउट ऑफ सिनेमा हॉल नियर यू. देख के पता चलेगा कि जो दुनिया बटी हुई है कि यार आलिया भट्ट स्पाई यूनिवर्स नॉट रियली एंड अदर. But we can't wait. देखते हैं क्या होता है. But yeah, this one was from Dear Zindagi. And don't forget, रोज सुबह ये मौका to win 2 open movie tickets in the big Bollywood quiz.

0: It's a Friday and what else apart from Alpha is hitting cinema halls? Toy Story 5 aaj aa rahi hai.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Any millennials, of course, lots of nostalgia involved with that one. Is wali ka jo plot hai, the premise looks very, very amazing because, you know, ek taraf wo sare conventional toys hain. धीरे धीरे विद एवरी यू नो इंस्टॉलमेंट ऑफ टॉय स्टोरी वो टेक्नोलॉजी का भी एडवांसमेंट होता जा रहा है राइट बट इन दिस वन दिस आई थिंक गोइंग टू बी लाइक अ स्क्रीन सो द टॉयज द कन्वेंशनल टॉयज आर गोइंग टू कम्पीट अगेंस्ट स्क्रीन टाइम एंड इट्स समथिंग दैट पेरेंट्स फेस ऑन अ डेली बेसिस सो इट्स गोइंग टू हिट होम नॉट जस्ट बच्चे बट पेरेंट्स इनफैक्ट ये वो स्टोरीज है ना जो पेरेंट्स एक्चुअली एंजॉय मच मोर द एनिमेशन फिल्म्स दैट पेरेंट्स एंजॉय मच मोर देन चिल्ड्रन बट टॉकिंग अबाउट टॉय स्टोरी 5 पापा जॉन्स एंड टॉय स्टोरी 5 पिज्जास हैव लैंडेड bringing movie-inspired flavors to your next meal. Try the Space Ranger Roni, loaded with double pepperoni for a bold, meaty bite. Round up your appetite with the Sheriff's Roundup, topped with the barbecue chicken and onions. Reach for the pie and enjoy a delicious combo of Italian sausage and banana peppers. Order any two or more Papa John's and Toy Story 5 pizzas for just 25 dirhams each and get your hands on a collectible with your qualifying order while stocks last. Better ingredients, better pizza, Papa John's. Order now

0: बुड्ढे
1: नमस्ते।
0: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा, आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, आपका तो आ रहा, गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ रहा है देखिए।
1: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: स्टूडियोज, लेकिन जाते जाते आई एम गोना बी गिविंग यू सम पीस ऑफ न्यूज दैट माइट मेक योर वीकेंड.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: देखो, वीकेंड है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, लेकिन कहां जाएं? आई विल टेल यू. यू कैन अनप्लग, प्ले एंड कनेक्ट एट द अनवाइंड कैफे, द यूएस फर्स्ट बोर्ड गेम कैफे. हजार से भी ज्यादा गेम्स ऑल अंडर वन रूफ. यू कैन टेक इन टू पिज्जास, बर्गर्स, क्रेजी शेक्स, स्पेशलिटी कॉफीज एज वेल एट अनवाइंड कैफे. द परफेक्ट स्पॉट फॉर फैमिली टाइम, friend catch-ups, birthdays and corporate get-togethers. Unwind Cafe was crowned What's On ka favorite cafe in 2024 and continued its winning streak and highly commended honors in 25 and 26. You can try their game masters, jo ki aapke doston ki khurafat level dekh ke games recommend bhi karte hain, and they get you playing in minutes with epic murder mystery dinners, trading card tournaments, party packages. There's always something exciting happening at the Unwind Cafe. For more info, visit unwinddubai.com. That's unwinddubai.com. On that winning note, I'm going to be taking your leave. Zora joins you next up until 2 p.m. मिलूंगा आपसे मंडे मॉर्निंग. इन द मीनवाइल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स 106.2 बिग एफएम. टिल मंडे, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड. बाय बाय.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती.
1: नाम है सिड, सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, थिंक अगेन. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Big 106.2. That's My Song by E.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
2: BBC News with Will Chalk. The World Health Organization says a trial has begun of two potential treatments for the strain of virus behind the current Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo. WHO experts say the trial will take months and may require more than 1,000 patients to produce definitive answers. Nine people have been killed in a bomb attack inside a crowded cafe next to a courthouse in the centre of the Syrian capital, Damascus. 20 others have been injured. The head of the Syrian Bar Association says six of the dead and seven of those injured are lawyers. A former US Olympic canoeist has been charged with vandalising the Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington after its multi-million dollar renovation by President Trump. But David Hearn's lawyers say he's innocent and his arrest is a cover-up for shoddy work. Japan has started installing hundreds of cameras in its northern mountains as part of a nationwide survey of the bear population, following a surge in attacks on humans. Japan has recorded 13 fatal maulings across the country in the past year. A rare surviving copy of the American Declaration of Independence has been discovered in London, the only known example of its kind outside the United States. It was seized from an American ship that was captured in 1776. It will go on display at the National Archives. At the World Cup, Spain have secured their spot in the last 16 following a comfortable 3-0 win over Austria. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
3: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बीत जाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू।
1: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
4: गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी हैप्पी फ्राइडे। 10:03 हो चुके हैं। हां जी, ज़ोहरा के साथ ऑपरेट ऑन बिग 106.2। दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड। यू नो आई कीप यू कंपनी चार घंटों के लिए ऑल द वे अंटिल 2, ब्रिंगिंग यू द हॉटेस्ट एंड द फ्रेशेस्ट ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक। बट उसके अलावा यार देखो, म्यूजिक की हम जब बात करते हैं, यू रेजोनेट विद डिफरेंट सॉन्ग्स, मे बी आई रेजोनेट विद डिफरेंट सॉन्ग्स। हमारी टेस्ट जो है म्यूजिक को लेके काफ़ी अलग होती है। एंड आई जस्ट केम अक्रॉस दिस वेरी ब्यूटिफुल पोस्ट दैट टॉक्स अबाउट वॉट योर टेस्ट इन म्यूजिक सेज अबाउट यू एंड योर पर्सनैलिटी। तो अगर आपको किसी एक टाइप का, एक जॉनर का म्यूजिक पसंद है, तो वॉट दैट सेज अबाउट यू एज अ पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है कि आपको वो म्यूजिक पसंद आता है, दैट इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टॉक अबाउट, बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ ऑल्सो बेटर, ऑल्सो अंडरस्टैंड वाई यू लाइक यू नो अ सर्टन जॉनर ऑफ सॉन्ग्स। तो उसके बारे में बात करेंगे। नाइस फील गुड टॉपिक टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, स्पेशली ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग। वीकेंड जो है अच्छे नोट पे शुरू करना चाहिए, नेगेटिविटी के साथ नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट्स माई मोटो ऑफ द डे। लेट्स स्टार्ट द आवर। इश्क मिटाए कमिंग योर वे राइट हियर ऑन द बिग मिक्स विद मी ज़ोहरा। गुड मॉर्निंग।

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलखूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: 36 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी आज फिलहाल है 49% पे, हाईज आज जाएंगे 37 तक, लोज जाएंगे सिर्फ 33 तक। ऑल इन ऑल ब्राइट, सनी, हॉट, ह्यूमिड, मतलब जो भी फॉर्म होते हैं गर्मी के, सब कुछ है यार आज।

0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ.
0: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. बिग 106.2, फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ ड्राइव.ae.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, अगर आप जा रही हैं शारजा की तरफ E311 लेकर शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, आपको लाइट ट्रैफिक मिलेगा. दिस इज इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 13, लेकिन मुहैसना फोर्थ क्रॉस करते हुए आपको मिल जाएगा हैवी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, एटलीस्ट अबाउट अ 15 मिनट डिले ऑन दैट रोड. उसके अलावा आपको मिल जाएगा द यूजुअल ट्रैफिक D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट गोइंग टूवर्ड्स D62 नादल हमार, बम्पर टू बम्पर सीन है वहां पे, कम से कम 8 से 10 मिनट का वहां पर आपको डिले मिल जाएगा. साथ ही साथ अगर आप है उम हुरैर एरिया के आसपास, वहां पे स्पेशली on D79 Khalid bin al-Walid street bumper to bumper traffic for about 12 minutes. Any other update you can let us know 4305 PM.
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो।
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: मैदान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे।
4: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Thakeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2. Listen to her every day.
5: Mugambo, खुश हुआ।
6: क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है पवन आजकल?
7: आजकल टैन इन ऑयल सैंपल, जो इंजन ऑयल
6: होता
7: है। कुछ
6: समझ नहीं आया ये कुछ। अच्छा बताओ, इंटरेस्टिंग कुछ मन से बना के बता दो। जिंदगी में क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बताओ?
7: जंपिंग चलो, यहाँ घूमो वो घूमो, कस्टमर के पास जाओ।
6: लव लाइफ में क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है?
7: हाउ आर यू?
6: आई एम गुड। हाँ, आई एम वेरी गुड। मेरी लव लाइफ तो एकदम जीरो है, नील बटे सन्नाटा। आपकी बताओ क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है? सेम टू यू? क्या मतलब सेम टू यू? मतलब आपके साथ वो हो, आपके साथ वो क्या रहा है?
7: नथिंग, आई जस्ट केम यूई 1 year बिफोर ओनली।
6: ओह, सो आर यू लुकिंग फॉर अ गर्ल?
7: या, यस्टरडे आई सॉ योर डीपी, यू नो, फर्स्ट टाइम आई टॉक्ड विद यू एंड देन आई सर्च्ड 106.2 देन आई गॉट टू नो माय गॉड मानसी लुक्स पीटी।
6: तो क्या आप मुझे ये हिंट दे रहे हो कि मेरी जैसी लड़की आपको चाहिए? आपकी जिंदगी ऐसा एक्सपेरिमेंट होगी ना कि आप फिर बोलोगे मैं कहाँ फंस गया।
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
9: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the Big Mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
12: 36 degrees Celsius outside, humidity बढ़ते हुए 62% पे, it is insanely humid. आज दोपहर तक भी यही हाल होने वाला है, शाम होते होते maybe it might drop down. Temperature तो गिरने वाला है up to 33, but it's going to be overall very humid today.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हंगामा तो डेफिनेटली होने वाला है फ्राइडे की शाम जो आ गई है बहुत जल्द. आज हंगामा डेफिनेटली होने वाला है बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू राइट. ऑन द वीकेंड्स वी नो दैट इट इज ऑलवेज मेंट टू बी easy going, it is meant to be relaxing, it is meant to be fun, it is meant to be everything that you wanted to do all week long. That is exactly what's going to happen, but we're moving into the third hour of the show. तीसरे घंटे में हम बात करेंगे अगर आपने धक्का-मुक्की करके एकदम स्ट्रगल कर के मेहनत कर के फेल हो के ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अगर पा लिया तो वो ड्राइविंग लाइसेंस आपको कौन सी कंट्रीज में बेनिफिट कर सकता है. लेट्स गेट इनटू दैट इन द नेक्स्ट आवर. यू विद मी ज़ोरा, अ वेरी गुड आफ्टरनून.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ee.
1: InsuranceMarket.ee.
0: Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा.
0: ये सुनो.
3: हाँ जी हाँ जी, सत श्रीकाल भाजी.
4: सत श्रीकाल, क्या हाल है? वीकेंड दे क्या प्लान, कहाँ पर चक दे फटे
3: भाजी? एकदम वीकेंड की फुल प्लानिंग है. अभी तो फिलहाल कॉमेडी का इंजेक्शन लेने जा रहे हैं. एक्चुअली वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, कैरी ऑन जट्टा.
4: क्या? अरे पर ये कोई टाइम है मूवी देखने का?
3: सर जी यही तो है सर, सबसे अलग काम करना सर, यही जिंदगी है.
4: क्या मतलब यूजुअली आप क्या काम करते हो? इस फ्राइडे एन ऑफ डे, व्हाट इज ये राज क्या है?
3: आई मीन टू एचआर एक्चुअली फ्राइडे इज माय ऑफ डे. मी एंड माय वाइफ वी आर गोइंग फॉर अ मूवी. तो
4: मैं समझ गया,
3: मैं बुक कर रहा था रात को, तो सिर्फ दो सीटें.
4: मैं
3: तो समझ गया,
4: यू आर इन एचआर, सारे रूल भी आप बनाते हो, उसको तोड़ते भी आप खुद ही हो. आप जा खड़े, हम जा खड़े हो जाते हैं लाइन वाइज.
3: सर एक ही छुट्टी मिलती है गरीबों को.
4: नहीं, आप देने वाले हैं, आप लेने वाले नहीं है छुट्टी. परमजीत जी,
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. बिग 106.2.

0: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, गुड आफ्टरनून. 12:15 हो चुके हैं. जोहरा के साथ हो आप ऑल द वे अंटिल 2 ऑन द बिग मिक्स. फिलहाल हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस ब्रांड न्यू इनिशिएटिव यार, द 34 कंट्री स्कीम. ये इनिशिएटिव क्या है? यूएई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का मुरखूस इनिशिएटिव, व्हिच इज बेसिकली एन अग्रीमेंट डिजाइंड टू फैसिलिटेट ड्राइविंग एंड डायरेक्ट लाइसेंस एक्सचेंज फॉर इमराती नेशनल्स. ये उनको बेनिफिट करता है, स्पेशली इफ यू आर रेसिडिंग और ट्रैवलिंग अब्रॉड. इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू एक्सपैट्स, लेकिन एक्सपैट एलिजिबिलिटी जो है वो भी डिपेंड करती है इंटायरली on your passport nationality and the individual destination laws. So aisa nahi hai ki aapko bilkul bhi nahi benefit karega. Of course, it is something that is meant for UAE citizens, because the initiative initially grants UAE citizens the right to drive in 33 countries, and you also have the option to swap your license for a local one in 34 countries without testing. But expats are not completely left out of these privileges, kyunki expat driving rights jo hai and license exchanges, these are actually based on reciprocal country agreements with their passport countries rather than the UAE residency. तो यहाँ पे आपका passport जो है वो matter बहुत करता है, which is why it's not that you will not benefit, but you do have your different privileges, वो हो सकता है. So that is something that has now been launched. But उसके अलावा एक study है which I really really would like to talk to, because I love whenever this debate comes into the picture, right? Gen Z versus millennials, and I love when any debate or any research is in favor of millennials, because मुझे ऐसा लगता है हम ज़्यादा knowledgeable वाली generation है, हमारी सुनो, हमारी बात सही होती है. We'll get into that debate, क्या हुआ exactly and क्या research ने ये prove किया है इसमें in just a bit. लेकिन let's continue the mood, because it is a weekend, it is a Friday afternoon. I'm going to make sure that we get you all set for that whatever you have planned this evening.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
2: Weekdays 9 PM to 12 AM on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. Missed your morning buzz?
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
2: ये सुनो।
5: हाँ जी,
6: सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल, क्या हाल है? वीकेंड दे क्या प्लान, कहाँ पर चक दे फटे
5: भाजी? एकदम वीकेंड की फुल प्लानिंग है। अभी तो फिलहाल कॉमेडी का इंजेक्शन लेने जा रहे हैं। एक्चुअली वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, कैरी ऑन जट्टा।
6: क्या? अरे पर ये कोई टाइम है मूवी देखने का?
5: सर जी यही तो है सर, सबसे अलग काम करना सर मेरी जिंदगी में।
6: क्या मतलब, यूजुअली आप क्या काम करते हो? इस फ्राइडे एन ऑफ डे, और व्हाट इज ये राज क्या है?
5: I am into HR actually. Friday is my off day. So me and my wife we are going for a movie. So
6: नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया।
5: रात को तो सिर्फ दो सीटें,
6: मैं समझ गया।
5: जो हमारी है,
6: यू आर इन HR, सारे रूल भी आप बनाते हो, उसको तोड़ते भी आप खुद ही हो। आप जा खड़े, हम जा खड़े हो जाते हैं लाइन वैसे।
5: सर एक ही छुट्टी मिलती है गरीबों को।
6: नहीं, आप देने वाले हैं, आप लेने वाले नहीं है छुट्टी, परमजीत जी।
2: Energy and action. Monday to Friday, 7 AM to 11 AM. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
7: ट्रैफिक थोड़ा बढ़ता हुआ, अगर आप E311 लेकर शारजा की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज स्टार्टिंग मोटर सिटी सेंटर, आपको मिलेगा वहां पे हैवी ट्रैफिक फॉर एटलीस्ट अबाउट 12 मिनट्स। D91 अलकुद स्ट्रीट पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, क्रॉसिंग बेरूत स्ट्रीट आपको मिल जाएगा वहां पे कम से कम 5 से 6 मिनट का डिले। थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा D70 पे भी, कैसाब्लांका स्ट्रीट हैवी ट्रैफिक फॉर अबाउट 10 to 12 मिनट्स। D83 रबात स्ट्रीट फेस्टिवल सिटी के पास भी हैवी ट्रैफिक एटलीस्ट फॉर अबाउट 8 मिनट्स। यूजुअली फ्राइडे वाले दिन इतना हैवी ट्रैफिक नहीं होता, बट आई थिंक इस फ्राइडे काफी ज्यादा लोग हड़बड़ी में है। कार एक्सीडेंट भी रिपोर्ट हुआ है DIFC के पास अराउंड ट्रेड सेंटर 1, सो वहां पे भी 8 मिनट का डिले। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे।
2: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: वेदर, क्या ही बोलूं वेदर के बारे में, इतनी ज्यादा गर्मी है यार फिलहाल। 37 डिग्रीज ऑलरेडी, ह्यूमिडिटी हैज गॉन अप टू 65। होपफुली टेम्परेचर इससे ज्यादा नहीं जाएगा। लोज आर एक्सपेक्टेड टू टच अबाउट जस्ट 33 लेटर टुडे। इट इज ऑल इन ऑल गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हॉट एंड वेरी ह्यूमिड द रेस्ट ऑफ द डे।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. This

0: 100% प्यार बहुत बार होता है और आपको भी हो जाएगा वंस यू गो टू दिस प्लेस. यहाँ पे अगर आपने एक स्टेकेशन कर लिया उसके बाद इतना प्यार हो जाएगा यू विल कीप वांट टू यू नो गो बैक एंड यू विल कीप वांटिंग टू यू नो रिक्रिएट ऑल दोज मेमोरीज बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गिविंग यू.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: A memory of a lifetime that you would want to live over and over and over again. The big summer surprises. Yeah, this summer Big 106.2 is giving you the ultimate stay-kay on Big Summer Surprises. Presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almira. This isn't Russell Hema. Itni stunning property hai. Russell Hema mein hai ek to, so you know it's going to be far away from the city. It's going to be beautiful. It's going to be exactly what you want it to be. Rixos Almira, the Russell Hema mein perfect hai. Family staycation ke liye to just unwind, relax and make some beautiful memories. Whether it is chilling by the pool or eating their amazing khana or just making memories. Ye sab kuch aap kar sakte ho. Saath hi saath, your chance of winning daily prizes as well, yaar, worth 8,500 dirhams, jisme movie tickets hai, jisme F&B vouchers hai, that you could win every single day. Bas aapko karna itna hai, sunte rehna hai. The Big Breakfast and the Big Thrill, yahan pe aap participate kar sakte ho through our WhatsApp, which is 0543091062. Hame bas ek message bhejna hai, BSS space apna naam. That's BSS space your name to our WhatsApp, which is 0543091062. And that's it. You will be able to register. Lucky ho gaye to naam nikal aayega. And you will be on that amazing staycay with your family. So make sure that you're tuned in and make sure that you participate. Big Summer Surprises, presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almira, Russell Hema, only on Big 106.2.
2: What's up, everyone?
1: Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Early in the morning.
1: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to her every day.
4: Mogembo, khush hua.
5: Kya experiment chal raha hai Pawan aajkal?
6: आजकल टैन इन ऑयल सैंपल जो इंजन ऑयल
5: कुछ होता कुछ है। समझ नहीं आया ये कुछ अच्छा बताओ इंटरेस्टिंग कुछ मन से बना के बता दो जिंदगी में क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो बताओ
6: जंपिंग चलो यहाँ घूमो वो घूमो कस्टमर के पास जाओ
5: लव लाइफ में क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है
6: हाउ आर यू
5: आई एम गुड हाँ आई एम वेरी गुड मेरी लव लाइफ तो एकदम जीरो अनिल बटे सन्नाटा आपकी बताओ क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है सेम टू यू क्या मतलब सेम टू यू मतलब आपके साथ वो आपके साथ वो क्या रहा है
6: नथिंग आई जस्ट केम ही वन ईयर बिफोर ओनली
5: ओह सो आर यू लुकिंग फॉर अ गर्ल
6: या यस्टरडे आई सॉ योर डीपी यू नो फर्स्ट टाइम आई टॉक्ड विद यू एंड देन आई सर्च्ड 106.2 देन आई गॉट टू नो माय गॉड मानसी लुक्स पीटी
5: तो क्या आप मुझे ये हिंट दे रहे हो कि मेरी जैसी लड़की आपको चाहिए आपकी जिंदगी ऐसा एक्सपेरिमेंट होगी ना कि आप फिर बोलोगे मैं कहाँ फंस गया
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: Traffic hal filhal E311 Sheikh Mohammed Zayed Road heavy traffic already wahan pe going towards Sharjah starting tawar 1 aapko milega kam se kam 12 se 15 minute ka traffic at least about a heavy traffic expected until S102 Sharjah Ring Road uske alawa D89 Airport Street the usual bumper to bumper traffic just for about 5 to 7 minutes thoda sa light traffic aapko mil jayega E44 Rasalkot Road D3 wale junction ke paas wahan pe bhi 10 se 12 minute ka delay and heavy traffic also on D77 Kuwait Street this is if you are heading towards Al Rafah area वहां पे आपको मिलेगा ट्रैफिक 12 मिनट के लिए एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे
1: selfdrive.ae नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द यूएई स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ बिग 106.2
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना
8: बहुत मैं अपनी फेवरेट हूं
1: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 The beat of Bollywood. Big 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ए मामू
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: सर पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपने कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: देख 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: मैदान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे।
3: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Takeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Varsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2.
4: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
5: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: प्रतीक कुहार की आवाज द ट्रैक इज कसूर उज्ज्वल खन्ना के साथ बिग 106.2 पे आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ फ्रॉम 2 टिल 5 इन कन्वर्सेशन विद यू
1: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: वेल मन जो है वो कभी कभार बारीक या बारीकियत से सोचता है, और जब वो सोचता है तो फिर उसको लगता है कि हाँ कुछ अगर मुखवास टाइप की चीज़ मिल जाए तो मज़ा आ जाए. अब ये मुखवास नहीं है, लेकिन मुखवास से पहले वाला जो स्टार्टर होता है ये वो है. लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ बढ़िया खा लिया, कुछ अच्छा खा लिया. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रीट साइड फूड जो बड़ा पॉपुलर है बॉम्बे साइड में, स्पेशली दिल्ली साइड में भी, बट बॉम्बे इनफैक्ट कोलकाता में भी. बट कोलकाता में झालमुरी दे मेक इट वेरी डिफरेंटली. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई स्टार्ट एज अ ग्रेन, देन आई एम पफ्ड बाय द हीट, मिक्स विद चटनीज एंड सेव फॉर अ स्ट्रीट साइड treat, tangy and spicy with a crunch so loud, a Mumbai snack that pleases the crowd. What am I? And the correct answer, of course, is Bhelpuri. Ashok, thank you very much for your answer. Abhi to Bhelpuri ke packet bhi mil jate hain aapko ready-made. All you got to do is just assemble and, you know, just chop some vegetables, kanda, khira, tomato, boiled aloo, hari mirchi, nimbu, and just sort everything together and voila, you're good to go. Well, that's what it is. It could be one of your weekend binge right now. Junoon, this song is eternal. Chahe weekend ho, chahe weekday ho, hame sunne ko bahut man karta hai. Take it away. Aapke saath until 5. Aap sun rahe The Big Life, Big 106.2 pe. This is the beat of Bollywood.

0: 105.2, the beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

Well, incredible ये गाना भी और इन दोनों की आवाज़ें भी, लेकिन कुमार शानू स्पेशल है. तो एक और बहुत ही स्पेशल गाना हो जाता है कैसे प्यार ना जाने को ही. That's what I'm playing right now. Until 5 आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ उज्ज्वल खन्ना के साथ.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: जो हाँ

0: कुमार शानू स्पेशल आप सुन रहे हैं बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ. आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ,
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: एब्सोल्युटली स्टीमी द सॉन्ग वाज एंड सो वाज सोनाली बेंद्रे एंड आमिर खान, जो इसके बीट्स थे. एवरीथिंग वाज जस्ट सो प्रॉपरली अरेंज्ड एंड ऑफ कोर्स जब बारिश हो जाती है तो सब कुछ वैसे ही बहुत स्टीमिंग लगता है. इस वक्त जो मुंबई का नजारा है, बहरहाल लेट्स गेट बैक टू कुमार शानू का नजारा. एक कंपेटिटर थे कुमार शानू के, वो थे उदित नारायण. एंड व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट देयर सॉर्ट ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज व्हाट ही सेड.
2: एंड उदित जी की तीन चीजें जो थोड़ी सी आपको, मतलब कि वो होता है ना दोस्ती वाली चीजें कि यार अनोइंग है ये तो, पर फन है.
3: नहीं ठीक है, उदित के साथ बैठो तो खाली हंसी मजाक ही होता रहता है बहुत, सबसे ज्यादा. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और बहुत दिल खुल के हंसते हैं, हम भी हंसते हैं एंड एक दूसरे का तारीफ करते हैं.
2: अरे वाह,
3: वो बड़ा तारीफ करता है. तारीफ तारीफ में वो बहुत कुछ बोल जाते हैं, मुझे भी पता चलता है. लेकिन अच्छा लगता है. एंड डायरेक्ट कभी झगड़ा तो किया नहीं आज तक. बहुत एडजस्टेबल है, बहुत एडजस्ट करना भी जानते हैं. बट प्यारा है.
0: आई थिंक अभी ये सब हो गया है, लेकिन उस समय थोड़ा ऐसा होता होगा. लेकिन मेरे को लगता है कि जो बाउंड्रीज थी वो इतनी क्लीन थी और सिंगर्स इतने कम थे कि इन्हीं दोनों के पास घूम फिर के गाने आते थे. सो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी राइवलरी का कुछ एंगल बन नहीं सकता. मैं ग्रह शोभा टाइप बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ है नहीं यहाँ पे. देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी राइवलरी. फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, द ट्रैक इज मेरी महबूबा, ऑल अबाउट कुमार शानू एंड थीम आवर. दिस इज द बिग लाइफ,
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 106.2, the beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना चाहो।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
4: Summer is here and Big Ticket is turning up the heat.
5: Win a guaranteed 20 million dirham grand prize.
4: 5 more winners will take home 100,000 dirhams.
5: Play Big Spin live on the show and win up to 1 million dirhams.
4: Plus 4 weekly e-draw winners.
5: Turn your summer into millions.
4: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
7: Listen to her every day.
8: Mugambo, खुश हुआ।
9: क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है पवन आजकल?
10: आजकल टैन इन ऑयल सैंपल, जो इंजन ऑयल
9: होता
10: है।
9: कुछ समझ नहीं आया ये, कुछ अच्छा बताओ, इंटरेस्टिंग कुछ मन से बना के बता दो। जिंदगी में क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो बताओ।
10: जंपिंग चलो, यहाँ घूमो वो घूमो, कस्टमर के पास जाओ।
9: लव लाइफ में क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है?
10: हाउ आर यू?
9: आई एम गुड। हाँ, आई एम वेरी गुड। मेरी लव लाइफ तो एकदम जीरो है, नील बटे सन्नाटा। आपकी बताओ क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है?
10: सेम टू यू।
9: सेम टू यू क्या मतलब? सेम टू यू मतलब आपके साथ वो, आपके साथ वो क्या रहा है?
10: नथिंग, आई जस्ट केम यूई 1 year बिफोर ओनली।
9: ओह, सो आर यू लुकिंग फॉर अ गर्ल?
10: या, यस्टरडे आई सॉ योर डीपी, यू नो, फर्स्ट टाइम आई टॉक्ड विद यू एंड देन आई सर्च्ड 106.2, देन आई गॉट टू नो, माय गॉड, मानसी लुक्स प्रीटी।
9: तो क्या आप मुझे ये हिंट दे रहे हो कि मेरी जैसी लड़की आपको चाहिए?
10: यस, करेक्ट, सही पकड़े।
9: आपकी जिंदगी ऐसा एक्सपेरिमेंट होगी ना कि आप फिर बोलोगे मैं कहाँ फंस गया।
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big Traffic brought to you by selfdrive.ae।
11: बिग 106.2 पे उज्ज्वल खन्ना के साथ है आप। ट्रैफिक अपडेट वेरी क्विकली, अगर आप जा रहे हैं इस वक्त शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से, आपको 10 मिनट का डिले मिलेगा। बरका के आसपास हैं, थोड़ा सा आपको पैचेस में ट्रैफिक वहाँ पे भी मिलेगा। अलकुज इंडस्ट्रियल एरिया 2 और 3 के आसपास आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलने वाला है। पोइट साइथ के आसपास हैं, हल्का फुल्का ट्रैफिक देयर इज वेल। जफिलिया ठीक ठाक ट्रैफिक है, ट्रेड सेंटर राउंडअबाउट पे हैं तो 2 मिनट का डिले वहाँ पे भी है। DIFC के आसपास आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा। इन द बाय लेन्स एनी द ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन टेक्स्ट मी 4305 व्हिच इज 4305। अप नेक्स्ट शफ़क़त तुमाना तली की आवाज़, द ट्रैक इज तेरी झुकी नजर।
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2।
12: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से?
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

अरिजीत सिंह की आवाज, द ट्रैक इज हरिया। हारने के बाद जीतने वाले को उज्जवल कहते हैं। टाइम टू रैप इट अप फ्रॉम माय साइड। यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इवनिंग अहेड। द बिग थ्रिल कम्स इन नेक्स्ट विद मानसी फ्रॉम 5 to 9, एंड ऑफ कोर्स यू हैव गॉट अ ग्रेट वीकेंड एज वेल। वी हैव गॉट द बिग वीकेंड, द मिलेनियल वीकेंड लाइंड अप एज वेल फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ एंजॉय ऑल द ब्लॉकबस्टर ट्रैक्स फ्रॉम द 2000s। गॉड ब्लेस यू फैमिली, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। और बहुत वाइसली अपनी जो फ्रेंडशिप है, जो अपनी दोस्ती है, वो आप चुने, और जो लोग आपको लगते हैं कि यस दे आर द पीपल हु आर वर्थ इट, सिर्फ उसी पे ही यू नो इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर इमोशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वेस्ट योर सेल्फ। रैपिंग इट अप, लीविंग यू विद अरिजीत सिंह, द ट्रैक इज जालिमा। हैव अ ग्रेट ग्रेट वीकेंड ऑन बिग 106.2। दिस इज उज्ज्वल साइनिंग ऑफ।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is The Big Thrill. The weekend is right here. Bringing in the weekend. All set to keep you company until 9. I'm Mansi. Filhal, to start with, jo cheeze hame badi achhi lagti hai, free. And ye to staycation hai. Puri family ke saath, it's time for the big summer surprises. Agar aapne abhi tak register nahi kiya hai, do that right away. Send us a WhatsApp. BSS, apna naam 0543091062 pe. Ab zindagi mein na, bahut ladkon ne mera dil toda hai. But I think the youngest boy today to break my heart is hardly, I think, all of 4. And has no interest in me. मैंने इतनी प्यारी बातें से की और इसने एंड में सिर्फ एक स्टेटमेंट मारा है कि मेरे नए जूते देखो. अब ये बच्चा कौन है वो तो हम इंस्टा पे डाल देंगे, बट आई थिंक हो गया है मेरा, लड़कों से हो गया है. अब एज मैटर नहीं करती है, लड़कों का इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में. फिलहाल किक स्टार्टिंग द शो विद

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:06। And of course, this is a dedication going out to Prithpal Mamu from Agam, a lovely little boy who's just a big fan of Shah Rukh Khan, and the only song that he loves is Jhoome Jo Pathaan. So right here on Big 106.2, a part of Fun Asia Network.

0: बॉलीवुड। ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
3: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae.
4: Hey, jaldi hata, mera khata na, chal hata. Arey jaldi hata, yaar sunna.
3: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: Not really big traffic, but I think log shopping ke liye nikal gaye hain, Dubai Hills Mall ke paas aapko traffic milega. There's also patchy traffic at the moment. If you're on the Sheikh Mohammed bin Zayed Motif to Mohisna, it is a bit slow moving, gets better post Etihad Mall. Thoda bahut traffic is waqt aapko Jeddah ke paas milega, and there's traffic near DIFC Business Bay if you're taking Sheikh Zayed, a 20 to 25 minute delay. Anything else you'd like to रिपोर्ट मुझे बता सकते हैं 800-1062 पे। और ट्रैफिक में बैठे बैठे क्या करना है, खेलते हैं 5 सेकंड रूल। अगर आपने खेलना है द नंबर इज द सेम 800-1062।
3: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: यू नो किसी दिन आपका मूड खराब हो जाता है, कभी कभार लोग खराब कर देते हैं. एंड पहले जब मेरा मूड खराब होता था, मुझे पता ही नहीं था लोग क्यों कहते हैं व्हेन यू नो यू नॉट इन द मूड जस्ट गो ऑन अ ड्राइव. बट जब से लाइसेंस मिला इट रियली हेल्प्स एंड थैंक्स टू सेल्फ ड्राइव डॉट ए, मतलब बजट के अंदर गाड़ी भी मिल गई है. इफ यू प्लानिंग टू रेंट अ कार एंड यू थिंक के कार रेंटल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो जो आपका हाल है वो मेरा हाल है. मैं भी हर जगह बस बजट फ्रेंडली चीजें ढूंढती रहती हूँ. सेल्फ ड्राइव डॉट ए हैज द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द यूएई राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 dirhams a month, exact 899 dirhams a month. At this price, paying more just doesn't make sense. कोई ओनरशिप नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है. जिंदगी में लोग स्ट्रेस देंगे बट सेल्फ ड्राइव डॉट ए की गाड़ी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देगी. सो जस्ट पिक योर कार एंड ड्राइव. लुक फॉर सेल्फ ड्राइव डॉट ए. आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी एंड हैसल फ्री टू यूज. सेल्फ ड्राइव, योर कार, योर प्राइस, योर वे.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: कितनी भी कोशिश कर लो बनी, दिन में ऐसा एक बंदा जरूर मिलेगा जो आपका मूड 100% खराब करे.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: आपने ये बात नोटिस करी, हमारा मूड ना कभी हमारी खुद की वजह से नहीं, लोगों की वजह से खराब होता है. और जब भी मेरा मूड खराब होता है, आई हैव दिस मंत्र. आई जस्ट लिसन टू दिस वन, विच इज
2: गोली मार भेजे मैं भेजे शोर करता है.
1: ये गाना बहुत सालों पहले आया था और आज ही के दिन आया था. आई लव द सॉन्ग. इनफैक्ट मैंने ये मूवी आज तक देखी नहीं है. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर आरजीवी, राम गोपाल वर्मा की मूवी थी बैक इन 1998. आज ही के दिन रिलीज हुई थी. ब्रिलियंट म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स हु कैन फॉरगेट भीकू मात्रे. अगर आपको याद आ गया कौन सी मूवी है, फटाफट मुझे बताओ 800-1062 पर. एंड व्हाइल यू आर एट इट, सम मोर म्यूजिक कमिंग योर वे. आल्सो रिमाइंडिंग यू, अगर आपने स्टेशन पे जाना है, किसी ने मूड खराब करा है तो मूड अच्छा हो जाएगा, सिर्फ व्हाट्सएप करना है BSS अपना पूरा नाम 0543091062 पे. एंड लेट मी सी कितनों को याद आ रहा है इस गाने से मूवी कौन सी थी.
0: बिग 106.2.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Manzi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hi, I'm so shocked. मुझे लगा था सबको सही जवाब पता होगा. It is literally very very heartbreaking. आज ही के दिन 1998 में 28 साल पहले ये कल्ट रिलीज हुई थी. In fact, अनुराग कश्यप की करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये. एंड सौरभ शुक्ला एंड अनुराग कश्यप ने ये मूवी साथ लिखी थी फॉर RGV. रातों रात स्टार बन गए थे मनोज बाजपेयी. In fact, he became bigger than the leads in the movie. अभी तक इतने गलत जवाब आ रहे हैं. किसी ने लिखा है प्यार तूने क्या किया, प्यार तूने क्या किया में मनोज बाजपेयी थे भी नहीं. मुंबई का किंग कौन, अगर ये डायलॉग सुन के भी आपको याद नहीं आ रहा है देन आई थिंक वीकेंड पे आपका होमवर्क है कि गूगल करो और ये मूवी देखो. लास्ट हिंट है, लेट मी सी हाउ मेनी इफ यू कैन गेस द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. कंप्लीटिंग 28 साल आज, इट इज अ कल्ट. इनफैक्ट इस गाने को शूट करते वक्त जो शूट कर रहे थे वो गायब हो गए एंड राम गोपाल वर्मा इतने गुस्से में थे उन्होंने खुद ही पूरा गाना शूट कर दिया. सो द लास्ट 5 मिनट्स फॉर यू टू गेस द मूवी दैट्स कंप्लीटिंग 28 साल टुडे. इट्स अ कल्ट क्लासिक, राम गोपाल वर्मा ने बनाई, उर्मिला मातोंडकर, शिफाली शाह ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ दिस मूवी एंड ये गाना 28 साल बाद भी, मतलब 12 बजे के बाद हर पार्टी का माहौल बनाता है. अब फोन लाइंस बज रही हैं. अब याद आया 800-1062 इज द

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Friday ki sham hai. Weekend aa chuka hai. And of course, weekend ke saath saath staycation jeetne ka mauka bhi aa chuka hai. Sabse pehle agar register nahi kiya hai, you want to win a family staycation, then do it right away. WhatsApp karna hai. 0543091062 हमारा WhatsApp नंबर है. BSS अपना नाम लिख के भेजना है. इसी के साथ वी सेलिब्रेटिंग दिस कल्ट क्लासिक. ओके, पीपल फ्रॉम मुंबई टुक इट पर्सनली व्हेन आई सेड क्या यार आपको ये मूवी याद नहीं है. और उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें अबाउट दीप मंदिर एंड ये मूवी के बारे में बताई हैं. इट इज अ कल्ट व्हिच आई हैवंट सीन. इफ यू स्टिल हैवंट गेस्ड, 28 साल पहले भीकु मात्रे मुंबई का किंग कॉन. वी सेलिब्रेटिंग दैट मूवी राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, 6:06।
1: Bollywood.

0: 20,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Friday ki sham hai, we're making plans for the weekend. Also, we're talking about this cult classic jisne aaj 28 saal complete kare hain. And Purnima ne apna debut kiya hai right here on Big 106.2. Hi, Purnima.
3: Hi.
2: Hi.
3: Stop in traffic.
2: पहली बंदी है जिसका आज के दिन में मुझे देखकर मूड जो है वो खराब नहीं हुआ. ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही है ये वरना तो लोगों के मुंह ही सड़े हुए हैं आजकल. फिलहाल मैंने आपको इतने सारे हिंट्स दिए थे. कल्ट क्लासिक है यार, लोग पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं?
3: अरे किसी ने नहीं देखा है ना, वो शर्मनाक बात है ब्रो.
2: नहीं मैं उनमें से हूँ ब्रो, जिन्होंने हाँ मैं मुझे पता है, मैं भी उन शर्मनाक लोगों में से हूँ जिन्होंने मूवी नहीं देखी है. बट मुझे गाने बहुत पसंद है. बट आई थिंक समवन फ्रॉम मुंबई विल टेक इट पर्सनली. मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्र. ये डायलॉग मुझे रटा हुआ
3: है. हर डांडिया, हर गोकाश्रमी, हर फेस्टिवल में ये गाना बजता है मुंबई में. एवरी फेस्टिवल मैंने डांडिया गणपति.
2: मुझे नहीं पता था मुंबई के लोग इस गाने पर डांडिया करते हैं.
3: डीजे वर्जन आता है इसका. सपनों में मिलती है का डीजे वर्जन आता है.
2: आई लव इट, आई लव इट. बट आई थिंक आई हैव टू वॉच दिस मूवी ओवर द वीकेंड.
3: अरे यस यस यस यस, वॉच इट व्हेन यू हैव लाइक कंप्लीट फ्री टाइम एंड यू कैन फील मुंबई का लाइफ कैसा लगता है. 90s का, अभी का नहीं, 90s का. When I used to live in Mumbai as a child.
2: Did you go to the theater and watch the movie?
3: Yes, yes. I live in the Mumbai ka suburbs. So there's a small theater called Deep Mandir. So वहाँ पे तभी A movie का कोई ऐसा था ना कि बच्चे नहीं आ सकते. अरे the movie was such a hit. Everyone went and saw it.
2: I know. मतलब the movie deserves the status of cult classic and I think I have to go and watch this movie. फिलहाल जब मूड खराब होता है तो आप भी क्या ये गाना सुनती हैं पूर्णिमा?
3: Yes, yes.
2: चलो on the count of three for Mumbai.
4: गोली मार भेजे
3: भेजे
2: की सुनेगा तो मरेगा
3: कल्लू.
2: पूर्णिमा भेजे की सुननी चाहिए कि दिल की सुननी चाहिए?
3: दिल की. भेजेगा सुनेगा तो मरेगा कल्लू.
2: चलो भाई आज ये प्ले कर देते हैं शाम को फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु लव्स द मूवी एंड हु इज फ्रॉम मुंबई.
3: ऑलराइट थैंक यू.
2: बाय पूर्णिमा.
3: बाय डियर. बाय.
4: ए गोली मार भेजे मैं.

0: Wow, your hair color looks stunning.
1: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
0: Yeah, right.
1: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
0: Really?
1: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
0: I'm buying it right now.
1: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
2: The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Missed your morning buzz? Yes or no?
3: हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल
4: जी। सत श्री अकाल, क्या हाल है? वीकेंड दे क्या प्लान, कहाँ पर चक दे फटे
3: भाजी? एकदम वीकेंड की फुल प्लानिंग है। अभी तो फिलहाल कॉमेडी का इंजेक्शन लेने जा रहे हैं। एक्चुअली वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, कैरी ऑन जट्टा।
4: क्या? अरे पर ये कोई टाइम है मूवी देखने का?
3: सर जी यही तो है सर, सबसे अलग काम करना सर, यही जिंदगी है।
4: क्या मतलब, यूजुअली आप क्या काम करते हो? इस फ्राइडे एन ऑफ डे, व्हाट इज, व्हाट इज ये राज क्या है?
3: I am into HR एक्चुअली। फ्राइडे इज माय ऑफ डे, सो मी एंड माय वाइफ वी आर गोइंग फॉर अ मूवी। तो
4: कल जब मैं
3: बुक कर रहा था रात को, तो सिर्फ दो सीटें
4: मैं
3: तो जो हमारी है।
4: यू आर इन HR, सारे रूल भी आप बनाते हो, उसको तोड़ते भी आप खुद ही हो। आप जा खड़े, हम जा खड़े हो जाते हैं लाइन वैसे।
3: सर एक ही छुट्टी मिलती है गरीबों को।
4: नहीं, आप देने वाले हैं, आप लेने वाले नहीं है छुट्टी, परमजीत जी।
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 35 डिग्रीज आउटसाइड, लो जाना है अराउंड 33, प्रिटी ह्यूमिड टुडे, 69% पे फिलहाल ह्यूमिडिटी।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: ये यहाँ क्या कर रही है? क्या मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अच्छा, अब जब मुंबई के तार छेड़ दिए हैं तो फोन लाइंस रुक ही नहीं रही हैं। आई हैड टू गिव सो मेनी हिंट्स, पहले सब गलत जवाब दे रहे थे एंड फाइनली व्हेन आई प्लेड दैट सॉन्ग सपने में मिलती है, एवरीबॉडी गॉट इट। राइट नाउ गॉट क्लारेंस हु इज अ ट्रू मुंबईकर। हाय क्लारेंस।
2: हाय मानसी, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड। जज्बात छेड़ दिए ना मैंने आज मुंबई वालों के।
2: सत्या फिल्म थी ऐसी, इट एक्चुअली रीडिफाइंड द करियर ऑफ ऑल द कास्ट व्हिच वाज व्हिच वर इन्वॉल्वड इन दैट मूवी except the guy Satya.
1: I know
2: everybody became a hit from that movie and Bhikkhu Mathre jo Manoj Bajpayee, where people kisko pata bhi nahi tha ki wo kaun hai karke,
1: like overnight sensation.
2: All of them did an excellent job.
1: You know what, I was just reading, Anurag Kashyap and Saurabh Shukla ne movie saath likhi thi.
2: Ah, that's what I didn't know that. I knew that Saurabh Shukla is a talented actor. I didn't know that he was a great writer, because after that, I believe he wrote a few other movies also, right?
1: Exactly. But this was the first time, you know, they wrote
2: this
1: script.
2: I know, and I watched
1: script.
2: That movie, and I'm also much crazy about this world and all from Bombay. So
1: wow,
2: I know it.
1: Wow.
2: I read a lot of these books and all from the especially.
1: मुझे बताओ आपने movie देखी कहाँ थी पहली बारी?
2: So what we did, I'd been to my cousin's place. Yeah, he had the luxury of having a color TV with a
1: VCR.
2: So cassette mangwai rental pe 10 ya 20 rupaye the, and we watched it n number of times. But that time we didn't like that movie that great. Okay, we thought okay, theek hai. But after a couple of months, when it really started picking up,
1: I have to watch this movie. Everybody is talking.
2: Yes.
1: Such
2: and
1: great
2: I
1: things.
2: Saw that. I saw that movie just a couple of days back. Trust me, you'll fall in love with it.
1: नहीं, जैसे आप भी inspired हो ना सर, मैं भी बहुत inspired हूँ।
2: हाँ, और नहीं inspired मत हो movie से, don't get inspired।
1: नहीं नहीं, मैं इस genre वाली movie से बहुत inspired हो जाती हूँ। मैं
2: genre वाले movie से inspired होते, but don't get inspired in the wrong way. I would say the best part about that movie is that this is the equivalent of the DDLJ of the
1: चलो देखनी पड़ेगी यार इस वीकेंड 100% वी ऑल शुड वॉच सत्या। पीपल हैव सीन, रीवॉच करो। आज मूवी को 28 साल हो गए,
2: यू विल रियली लव।
1: माहौल बनाते हैं, इस वीकेंड देखते हैं, सत्या ही देखेंगे इस वीकेंड।
2: आई विश यू ऑल द बेस्ट इन वॉचिंग दैट मूवी, यू विल लव इट।
1: ये तो सर आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं बस एंट्री मारने वाली हूँ स्क्रीन के अंदर, मुंबई जाके ये मेरा साइड हसल होने वाला है।
2: देख लो एनीवेज, मानसी यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आई हैव बीन लिसनिंग टू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम।
1: इट्स रियली नाइस।
2: Like, जब भी मैं फ्री हूँ शाम के टाइम पे, आई एम ड्राइविंग बैक होम, यस आई मेक इट अ पॉइंट।
1: हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच।
2: आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ दिस चैनल, सो दैट्स द रीजन।
1: हाउ स्वीट, रेडियो का किंग कौन? बिग 106.2। But thank you so much, Clarence, and you have a great, great, great
2: you
1: weekend. अब मैंने सारे गाने इस मूवी के प्ले कर ही दिए, बस एक वो रोमांटिक गाना बजाए, तू मेरे पास भी है।
2: हाँ, that's a good movie.
1: हाँ,
2: बस उसमें वो सत्या के ऊपर थोड़ा अभी
1: आप रिवील मत करो, मुझे देखनी है। Don't give me the suspense. I want to watch the movie.
2: Okay, take care.
1: Chalo, you have a great evening. Bye.
2: You too. Bye.

0: चॉइस। मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Early in the morning, the big breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color.
2: Insurance Market.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsuranceMarket.ae.
3: Thinking about looking and feeling your best? At Zulekha Hospital, our aesthetic and plastic surgery specialists deliver discreet, world-class care in facial refinement, body contouring, and cosmetic enhancement using advanced techniques designed to enhance your natural features with precision and balance, with results that look natural and feel like you. Zulekha Hospital, where confidence feels natural. Call 600-52442 to book your appointment.
4: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 34 डिग्रीज लो जाने वाला है, अराउंड 32। बहुत ह्यूमिड है आज, फिलहाल ह्यूमिडिटी 68% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर
2: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
3: The Big Jill.
4: All my favorite music in one spot.
3: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by SelfDrive.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
5: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
6: मेरे सामने एनालिसिस आया है दैट द काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक, यू आर बेसिकली इमोशनल, यू आर नॉस्टैल्जिक, यू प्रोबेबली हैव अ सॉन्ग फॉर एवरी लाइफ सिचुएशन, यू आर अ रोमांटिक एट हार्ट इवन इफ यू प्रिटेंड दैट यू आर नॉट, एंड यू लव शेयर्ड एक्सपीरियंसेस लाइक वेडिंग्स, रोड ट्रिप्स, कैरियोके एंड अंताक्षरी। क्या बाबा जी ने सही गेस किया है आपके बारे में?
7: Absolutely, because you know when you were saying everything, I was actually relating to, yeah, this is what I have done, this is what I've been doing so far.
6: Oh my god,
7: music baba is like very right.
6: मेरे म्यूजिक बाबा को बोलना पड़ेगा कि इसका हम पैसा चार्ज कर सकते हैं साइड बिजनेस।
7: यस यस फॉर श्योर।
6: चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज अमेजिंग। हैव अ ग्रेट डे, बाय।
3: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 टू 5 पीएम द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Honestly, not really big patchy traffic shikzad, par 19 minute delay, this traffic varka se murdiv, aage mohesna, almost a 25 minute ka delay, heavy traffic though near Nadal Hammer. Agar aap Fahidi ke paas hain, is kind of standstill at the moment, Karama Mankul side, bhi patchy traffic. Anything else you'd like to report, mujhe bataiye 800-1062 par.
3: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा। 106.2 The Beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill and you have been the Big Summer Surprises. We're giving you a chance to win a stunning staycation with your entire family. Property Kamal Hai, Rixos Almarid in Russell Khema. Beat the heat in style, chill by the pool, eat some yum food, have a lot of fun. But for all of that, aapne register karna hai. 0543091062 पे व्हाट्सएप करना है. बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं तो व्हाट्सएप करना है. BSS अपना नाम जस्ट लाइक जहीर एंड दिलीप कुमार. गुड इवनिंग.
2: गुड इवनिंग मानसी.
1: गुड इवनिंग. बड़ा अच्छा नाम है सर, दिलीप कुमार. बट आपने डीपी तो पता नहीं क्या लगाई हुई है, किसी प्रिंटर की.
2: मैं जहीर हूं, लोगो.
1: अच्छा, कंपनी की लोगो है. बड़े लॉयल एम्प्लॉय हो आप. कंपनी देता आपके फोन का बिल?
3: नहीं नहीं, कंपनी भरती है ना बिल इसके लिए.
1: अच्छा, तभी लगा रखी है. जहीर ने तीन गुलाब लगा रखे हैं.
2: मेरा फोटो भी उसके अंदर.
1: नहीं, आपका फोटो तो माशाल्लाह कमाल है, बट वो गुलाब किसके लिए? तीन तीन
2: बस अपने लिए और किसी के लिए नहीं है.
1: किसी को दे दो, अपने पास कब तक रखोगे गुलाब?
2: बीवी है ना, उसको देख के रखा हुआ है ना.
1: तो पहले क्यों बोला कि आपने लिए, किसी और के लिए नहीं है. मिक्स सिग्नल्स. फिलहाल क्या प्लान है दिलीप साहब, वीकेंड पे आपने ऑफिस जाना है कि कुछ पार्टी शार्टी करोगे?
3: नहीं नहीं, कुछ पार्टी शार्टी का ऐसा कोई प्लान वगैरह नहीं है, तो बस उम्मीद है कि कुछ विन हो जाएगा तो जा सके.
1: ये देखो, मतलब अगर मैं ना हूँ तो आप वीकेंड पे कुछ भी नहीं करोगे?
3: नहीं नहीं, आप बनाना है प्लान हमारा.
1: सो क्यूट. जहीर आपका क्या प्लान है?
2: जिम में जाना है अभी. बस
1: जिम जाना है?
2: हाँ, अभी 15 मिनट के बाद जिम में.
1: वाओ, वेरी फिट. तभी ये गुलाब लगा रखे तीन तीन. ये बीवी के लिए तो नहीं है जो इतना जिम विम जा रहे हो आप?
2: नहीं नहीं,
1: हम आईडी चेक करेंगे अगर आप जीतोगे. हाँ, स्टेकेशन फैमिली के साथ ही जाना है. चलो, अब आप दोनों के बीच में मुकाबला होने वाला है. एंड वेरी वेरी सिंपल, मैं आपको एक गाना सुनाने वाली हूँ. वो एक बहुत ही एग्जॉटिक लोकेशन पे शूट हुआ है. एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लोकेशन एंड द गाना. जवाब देने के लिए आपको बोलना है बिग दिलीप बिग जहीर. ठीक है? हाँ, अगर आपने ये नहीं किया. बिग मतलब बिग, बड़े दिल वाला.
2: बड़े दिल वाला.
1: बट आपको बोलना है बिग जहीर बिग दिलीप. अगर आपने ये नहीं किया तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे. ठीक है?
2: जी जी
1: जी. चलिए, तैयार हैं दोनों? ऑल द वेरी बेस्ट. इट्स टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस.
0: पार्टिसिपेट इन द बॉलीवुड वेके कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
1: All right, तो पहले गाना ध्यान से सुनिए. सुना है आप दोनों ने गाना?
2: जी जी सुना.
1: चलो, नहीं नहीं, अभी तो सर मैंने सवाल ही नहीं पूछा है.
3: अच्छा,
1: नहीं, किस चीज के लिए बिग दिलीप बोला आपने, मैं जानना चाह रही हूँ.
3: नहीं, मैं समझा कि गाने को आइडेंटिफाई करना है कि क्या
1: पर
3: है.
1: मैंने तो गाना सुना ही दिया, इसमें क्या आइडेंटिफाई करोगे आप?
3: अच्छा अच्छा, राइट राइट, पूरा सुनाई दिया. करेक्ट.
1: चलो, अब आपका पहला सवाल है, नेम द एक्ट्रेस जो इस गाने में थी.
3: बिग दिलीप. कैटरीना कैफ.
1: श्योर हो सर आप?
3: यस यस, बिल्कुल.
1: सोच सोच के बोला. बिल्कुल सही जवाब, कैटरीना कैफ इज द राइट आंसर.
3: थैंक यू.
1: 1.2 दिलीप. ये देखो जहीर कितने खुश हो रहे हैं. क्या वाह यार, ये पहली ऐसी देखिए दोस्ती हुई भी नहीं फिर भी खुश हो रहे हैं. अच्छा, दूसरा सवाल, गाना जो आपने अभी भी सुना तेरी ओर, ये किस मूवी से था?
3: बिग दिलीप.
1: हां जी,
3: सिंग इज सिंग.
1: बिल्कुल सही जवाब.
2: कांग्रेचुलेशन दिलीप.
1: हाय यार जहीर, आप सच्ची बड़े दिल वाले हो.
2: कोई बात नहीं है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम.
1: हाउ स्वीट, वी नीड मोर पीपल लाइक जहीर. तालियां जहीर के लिए भी यार. सब किसी ने नहीं किया आज से पहले.
3: आई लाइक दिस स्पिरिट यार. आई लाइक
1: वेरी नाइस. नो
3: प्रॉब्लम.
1: Congratulations, Dilip, you're walking away with open movie tickets and F&B vouchers. Plus, आपका नाम draw में जा रहा है for the staycation. And Zaheer, आप दिल जीत के जा रहे हो आज शाम. एक गुलाब मेरी तरफ से extra लगा लो वहाँ पे.
3: Thank you,
2: नो प्रॉब्लम चल जाएगा।
1: चलो बाय।
2: तो आपको दे देता हूँ एक गुलाब।
1: रुक जाओ अभी बस हो गया, अभी जिम जाओ आप, ठीक है?
2: चलो
1: बाय।
2: चलो बाय बाय।
3: रियली अप्रिशिएट योर वर्क, आपका आवाज और सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए।
1: सर मुझे ले जाओ फिर स्टेकेशन फैमिली में।
3: जीता इसलिए नहीं बता रहा हूँ,
1: मैं कह रही हूँ मुझे ले जाओ अपने साथ ना फैमिली मेंबर बना के स्टेकेशन, अगर आप जीतते हो तो।
2: पक्का पक्का।
1: स्वीट यार आप लोग कितने क्यूट हो। थैंक यू सो मच। बाय
2: बाय
1: बाय।
0: पार्टिसिपेट इन द बॉलीवुड वेके कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन। बिग समर सरप्राइजेस। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स। टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सोस अलमायरिड रस अल खाइमा। Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: क्या होता है, कैसे होता है, जाने ये कोई ना।
1: अरे ये यहाँ क्या कर रही है, मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ली, तेरे बाप का माल है?
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता।
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फिलहाल यो वेलकम. अगर आप विजिट वीजा पे हैं या फिर आप किसी को जानते हैं फैमिली फ्रेंड्स और उन विजिट वीजा, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है. यूएई सेट्स जुलाई 9th एज डेडलाइन फॉर विजिटर्स अफेक्टेड बाय फ्लाइट डिस्टेंस. फॉर विजिट वीजा होल्डर्स जो कंट्री नहीं छोड़ पाए थे, अपनी कंट्री नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ एयर स्पेस क्लोजर्स, फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस, दे वर ग्रांटेड अ टेम्पररी एग्जेम्पशन फ्रॉम ओवरस्टे फाइन्स. बट अब ये 9th ऑफ जुलाई तक ही है. सो अगर आप विजिट वीजा पे हैं या कोई और जैसे आप जानते हैं, either change your visa status by the 9th of July or leave before 9th of July, वरना आपको overstay fines देने हो सकते हैं. So yeah, important news coming in for all those who couldn't leave the country because of the airspace closures. Now you have time until 9th, it's already the 3rd. तो 6 दिन में या तो आप अपना visa status change कीजिए or else book your tickets. And while you're at it, we've got the weekend here. So some weekend वाला music. Also when I come back, अगर आपको कभी किसी ने ghost किया है and you're feeling rejected, I think इससे बुरा हो ही नहीं सकता है. सोचो आप अपनी शादी के दिन ghost हो जाओ. More on this story when I come back.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

फ्रॉम हमारा जमाना बोलने का आई थिंक टाइम आ गया है. अर्ली 2000s गौहर खान इन दिस सॉन्ग. इन फैक्ट गौहर खान दीज डेज आई एम लविंग हर ऑन इंस्टाग्राम. सो गौहर हस्बैंड जैद दरबार इज अ पार्ट ऑफ दिस रियलिटी शो विच इज एयरिंग ऑन अमेजॉन प्राइम एंड ही इज गॉट समथिंग गोइंग ऑन विद निखिल चिन्नप्पा. मैंने अभी तक शो देखा नहीं है बट इंस्टाग्राम से मुझे ये खबर मिली है. जो गौहर खान के एक्स थे इन बिग बॉस व्हेन शी वाज इन बिग बॉस शी एक्चुअली स्टार्टेड डेटिंग कुशाल एंड कुशाल भी उस शो में. सो बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है. द वे गौहर इज डिफेंडिंग जैद दरबार ऑन इंस्टाग्राम आई थिंक उसूल है लाइफ का, सबका होना चाहिए. दोस्ती हो, मोहब्बत हो, आपको अपने बंदे को अपने

दोस्त को उनकी पीठ पीछे डिफेंड करना जरूरी है, क्योंकि सामने सामने दोस्तियां मोहब्बत तो सब दिखाते हैं, जो पीठ पीछे आपके उस रूम में उस जगह पे ना होने के बावजूद भी आपके लिए स्टैंड ले, वो होता है सच्चा दोस्त, सच्चा बंधु। Coming up next, bringing in the weekend. Big 106.2.

0: Lo-Fi and Night Feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: आप चुम्मी को घर ड्रॉप करते हो और मैं आपकी गाड़ी से उतरती हूँ और मैं अपने घर जा रही होती हूँ।

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: प्रीत,

Thank you. Thank you. I would like to introduce my friend and a great musician, Ashwin, over here. Ashwin खुद बहुत अच्छे कंपोजर हैं. इन्होंने एक मराठी फिल्म का म्यूज़िक किया है, मैंने सुना है, और डॉक्टर एन राजम के शागिर्द हैं. और अगेन दोबारा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने अश्विन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: मैं खोया तो ढूंढ रहा हूँ, चुपके से एक ख्वाब में जाया हूँ।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, तेरी चुम्मन पिछली संग वर्गा, है किरना दे विच नशा जिहा, किसे छीमे सप दे डंग वर्गा। आज दिन चढ़िया तेरे